0: स्प्रिंग्स में 3 साल से रह रहा हूँ। My favorite thing about Empantwe, Alice Springs, is its nature, open fields, and the ability to explore the wide lands freely. इस गांव Empantwe, Alice Springs की मेरी पसंदीदा चीज है इसकी फितरत, खुली खुले मैदान, साफ आबोहवा और फिरने के लंबे लंबे राह। I want to invite everyone from the Urdu and the Pakistani community to come and celebrate the big day out in harmony. मैं अपनी उर्दू और पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत देता हूँ कि हमारे साथ आएं और बिग डे आउट एंड हार्मनी को मनाएं। MISCA has been presenting the Big Day Out Harmony since 1999. MISCA ये Big Day Out in Harmony 1999 से मना रहे हैं। It's going to be a great day with cultural performances, music, dancing, food and lots of children's activities. इस दिन चटपटे खाने, खेल कूद, मौसीकी, नाच और गाना और बच्चों के खेलने की चीज़ें मिलेंगी। Everyone is welcome and it's a free event. We would love to have people come down and celebrate our beautiful multicultural community. आप सब लोग आएं और हमारे साथ आके मिलजुली सकाफतें मनाएं।
1: This is DJ Rocklicious, and you're listening to ACCC 102.1 FM.